0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874। Ab kis

मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तैन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां।

सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ है मुझे भरया है, मरण काल का त्रास ने भरया है, हो जो सदा हमारे बचा सरियस्त जू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्म अवतरा, काल पाए सब जुग अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जसने उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजाज ने आप सुवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलम बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की बीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की बीर पछाने, खड़गड़ के पट पट की जाने, जा बुद्ध करख करा कर तारा, प्रजा दर्त तब दी अपारा, जा ब्या करख कर तो कबू, तुम मैं मिलत दे दर सब हूं, जेते वदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद वेद हर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ चारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा, ता को कार्य बहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध जेती, वर्णत पेन पेन तो है।

सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न माने सिमरत

आवे। नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते राय। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब बजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बेटा जिस दियां ए वड़ियाइया, कहे नानक सुनो संत सब धरु प्यार, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुध जिनका से नाम हर कह लागे। कह नानक तैं सुख होआ, तित कर अनहद वाजी।

संत साजन पैसरे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनल तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

जिनके वड्डे भाग वड उचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी सजन सचा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा तनासरी महला चौथा हम अंधली अंध बिखै बिखराते क्यों चालां गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै अपन पाली हम अंधली अंध बिखै बिखराते क्यों चालां गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै अपन पाली।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

प्रवान करो जी कलगी तरपिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश की चढ़दी कला दी प्रतीक प्यार अते सत्कार भरी गुरु फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिक्खी गुस्से नाल जुड़े श्रोता चन विसाखी का शुभ दिहाड़ा 14 अप्रैल नू आ रहा है, क्यों ना फिर अज आप जी नाल कलगी तर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की बख्शिश खंडे दी पोहल जा फिर अमृत दी दात बारे विचार करिए। पर पहला सरवण करो जी सिक्खी विरसे दे बानी गुरु नानक साहिब जी दे इलाही फरमान जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 993 उपर सुशोभित हैं। अमृत की सार सोई जाने जय अमृत का तुपारी जियो

श्रोता जन, असी आज दी विचार का मजमून चुनिया है अमृत अते विचारो गुरु नानक साहिब जी दे इना बचना नू। आप अमृत दी परिभाषा ही नहीं सगो उस दे गुण भी दर्शाते हैं। गरीब नवाज फरमा रहे हैं कि अमृत दी सार भाव कदर कीमत ओही जान सकता है जो इस दाता व्यापारी होवे, भाव इस नू विहाजन दी समर्था रखदा होवे।

गुरु नानक साहब आख रहे हैं कि ए दात प्राप्त करन ले जीव नु सदा कायम रहन वाले परमात्मा दी सिफत सलाह विच जुड़ना जरूरी है, जिस लई परमात्मा दी बख्शिश आत्मिक जीवन देन वाली सिफत सलाह दी कदर करनी सिखनी पवेगी, अते इन्ना गुणा दी प्राप्ति लई गुरु दी ओट लैनी पवेगी। गुरु राही जीव नाम अमृत दा व्यापारी बन जांदा है। गुरु नाल मिलाप दी लोचना रखण वाले स्रोता जन ए सारी दात किसे विरले बंदे नू गुरु दी राही प्राप्त हुंदी है।

0: हे प्रभु, तेरी माया दे टाकरे ते मैं की बेचारा हां। माया दे बंधना तो बचन ले ना ही मैं हुण कुछ कर रहा हां, ना ही इस तो पहला कुछ कर सकिया हां। मैनू तां सतगुर ने मेहर करके तेरा आत्मक जीवन देण वाला नाम बख्शिया है, जिसनू तू गुरु दी राही अपना अमृत नाम दिंदा है, उसनू कोई होर तदवीर करन दी लोड़ ही नहीं रह जांदी।
1: हे नानक, प्रभु दे दर ते अरदास कर ते आख, हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हां।

प्यारे श्रोता जन, खालसे दी साजना कोई बेहरकत सुपना नहीं सी। दुनिया च अनेकां धर्म हन अते हर एक धार्मिक पैगंबर ने सिर्फ अपनी दुनियावी यात्रा समय आपो अपने धार्मिक असूल पेश करन दी कोशिश कीती अते उस दी परपक्ता ले उन्हां दे विचारां दे पैरोकारां ने उन्हां असूलां दी आलोचना कीती।

0: इस मिशन की पूर्ति लिए गुरु नानक साहब जी ने दसा जामिया विच आना पिया, क्योंकि आप जी ने हर स्वरूप विच एक नवी सेध अते अध्यात्मिक सबक सिखाया अते हर स्वरूप विच नवी शक्ति नवे सिद्धांत अते नवे निशाने सिर्फ प्रगटाए ही नहीं सगो पूरन ताई दा सबूत भी दिता।
1: सिख फलसफे नूं बेचारियां पता चलदा है कि गुरु नानक साहिब जी ने खालसे दी विशाल तैयारी लई दुनियावी सफर नूं दो हिस्सों विच वंडिया। गुरु नानक साहिब जी दी जोत ने पहले हिस्से विच आत्मिक विकास अते सदाचारक कदरां कीमतां संतपन दे गुणां विच परपक कीता गया। गुरमुख

पहले हिस्से दे 137 सालां दे लंबे समय विच सतगुरां ने सिमरन ते सेवा राही हुकम मन्ना, अनथक ते निष्काम सेवा करन, सहनशीलता, निमरता अते निर्माणता आदि संत मन दे गुणां विच निपुण कीता।

0: हे भाई सदा नाल निभण वाला धन कमाण ले मन नू हाली वर्गा उद्यमी बना उच्चे आचरण नू बाही समझ मेहनत नाम फसल वास्ते पानी है ए अपना शरीर ही पैली है इस पैली विच परमात्मा दा नाम बीज बी बीज के उसनू पंछियां तो बचाउण ले सुहागा फेरना जरूरी है। इसे तरह जे संतोख वाला जीवन नहीं तां माया दी तृष्णा नाम बीज नू मुका देवेगी। संतोख नाम बीज नू तृष्णा पंछियां तो बचाउण ले सुहागा है।
1: साडा जीवन नाम फसल दी राखी करन लई राखा है।
0: हे भाई ए बाही कीतियां शरीर पैली विच परमात्मा दी मेहर नाल प्रेम पैदा होवेगा। वेख जिन्हां ए वाही कीती ओ हिरदे नाम धन नाल तनाड हो गए।

दसम पिता ने सामत 1753 भाव 1695 ईस्वी की चरित्र वार्ता लिखी, जिन्हां विच जिक्र है, सुध जब ते हम तरी बचन गुर दिए हमारे, पूत एह प्राण तो है प्राण जब लग घाट थारे, निज नारी के साथ नहीं तुम नित बढ़ैयो, पर नारी की सेज भूल।

सतगुरु जी ने उचेचा प्रण लिया कि बैर अते बदले दी क्रोध अग्नि विच भी फस के पर इस्त्री पाप नहीं करना। रहसनामिया विच इस विकार बारे लफज भी तुरकनी वरत्या है। पावे के पर इस्त्री तो पहला ही काफी रोकया जा चुका सी, हुण ए नवा खतरा आण पिया सी कि जो लोग सिख कौम दे विरुद्ध जहाद खड़ा करी बैठे हन अते इसी ओट लैके जो जो कुकर्म ओ लोग जायज समझ रहे हन किते सिख दी बदला लैण दी खातर ओही कुकर्म ना कर बैठन।

0: खास कर रड़ाई करन दी लोड़ पी ताही पई कि एक ऐसा वाकया सचमुच पेश आ चुकिया सी। जंग विच एक अमीर तुरक दा डोला सिखां दे हाथ लगा। उस जवान बीबी नूं गुरु दी हजूरी विच लिया के सिखां ने ओही सलूक करन दी इजाजत मंगी जो तुरक लोग हिंदू बीबियां नाल करदे सन। पर सतगुरु जी ने बड़ी करड़ाई नाल इस घोर पाप तों सिखां नूं बरजिया। इस गाथा दा इतिहासिक तत्थ इंज दर्ज मिलता है। पुन सिंगन बूझे गुण खाणी सकल तुरक भुगवे हिंदवाणी। सिख बदला ले भला जनावे गुर शास्त्र क्यों बर्ज हटावे। सुन सतगुर बोले तिस बेरे हम ले जानो पंथ उचेरे। नहीं अदगित बिखे पुचावे जाते कलमल करन हटावे। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਰਕਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ शराब बरतन की दलेरी नहीं सी कर सकता। पर तमाकू का नशा नवा ही भारत विच आया सी। जहांगीर बादशाह ने इस दे बरतन विरुद्ध हुक्म भी जारी किए सन।
1: एक
0: चीज सस्ती, नशा भी थोड़ा चिर रहने वाला, सो ए आम प्रचलित हो गया। बरादरी भाईचारा विच खुल मखुला वरतिया जान लग पिया। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने इस नशे तो बचाउण लई सिखां कोलों खास उचेचा इकरार लिया। पर भागां दे गेड़ वेखो कि मेरे लफ्जां दी ओट लैके सिख शराब विच रुड़े जा रहे हन। जिवें इस दे बरतन वास्ते इन्हां नूं खुली इजाजत मिल चुकी है। श्रोता जन, सिख दा प्रण यह है शुद्ध आचरण वास्ते, जथेबंदी दी वर्दी कायम रखण वास्ते, ऊच नीच दा भेदभाव मिटाउण लई तमाकू शराब अते होर नशीलियां वस्तुआं दे नशे तो भी बचे रहण लई, जिस नूं भलियां बरादरियां ने भी गलती खा के बरतना शुरू कर दिता।
2: कुठा ना खाण लई क्योंकि इस नजायज दबाव दी राही गैर मुस्लिम जनता दे अंदरों वीर रस नूं दूर करन दा जतन सी। इंसानियत दे दो ही अंग हन, ना किसे तो डरना ना ही किसे नूं डराउणा। इसलिए ही सिख अमृत दी दात दी लोचना करदा है।
0: क्योंकि आत्मिक आनंद एक ऐसा अमृत है जिस नूं देवते मनुख मुनि लोक लभते फिरदे हन। पर एक कदी ना भुलो कि ये अमृत गुरु तो ही मिलदा है। जिस मनुख उते गुरु ने मेहर कीती उसने ये अमृत प्राप्त कर लिया। क्योंकि उसने सदा कायम रहन वाला प्रभु अपने मन विच टिका लिया।
2: आपा हर रोज आनंद साहिब जी दी बाणी अंदर गुरु अमरदास साहिब जी दे एह बचन पढ़दे अते सुनदे हां। सुर नर मुंजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन बसाया। जी जंत सब तुद उपाए एक बेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।

प्यारे श्रोतियो, साडा दुनियावी सफर उतनी देर सफल नहीं जे हो सकता जितनी देर असि गुरु की दीक्षा लेके अपना रोजाना आचार करदार व्यवहार सिखी दे असूलों से

0: साहित्य प्रेमियों, जेकर तुसी किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हो या फिर तुसी कोई विचार साझा करना चाहते हो तो तुसी साडे प्रोग्राम दे कोआर्डिनेटर बीबी सुखराज कौर नाल संपर्क कर सकते हो। उन्हां दा टेलीफोन नंबर है एरिया कोड 250-392-4362। साड़े स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते साड़ा फैक्स नंबर है एरिया कोड 250-392-3375। ईमेल नाल लगदा असीं अपना ईमेल एड्रेस भी याद करा देंगे। ए है GWSSA@thalas.net। श्रोता जन, तुसीं इह प्रोग्राम साडे वेब पेज तों डाउनलोड करके भी सुन सकदे हो। जानकारी लई नोट करो जी, साडा वेब पेज पता है www.singsabha.com। स्पेलिंग नोट करो जी SINGHSABA। जी हाँ, सभा नूं असीं SABA स्पेल कीता है। जेकर तुसी ए प्रोग्राम इंटरनेट तो सुन रहे हो तां अपने विचार सानू ईमेल करो जी, अते अपने मुल्क दा नाम भी जरूर लिखो। साडी ये हमेशा ही कोशिश रहेगी कि तुहाडे विचारां दी रोशनी विच इस प्रोग्राम नूं होर भी चंगेरा बना सकीए। याद रखो, ये प्रोग्राम विलियम्स लेक विच हफ्ते दे विचकार भी सुनिया जा सकता है। कुछ नवे अते पुराने टाइम इस तरह है। एतवार नवा प्रोग्राम साढ़े सब शाम नूं, दूसरे दिनां विच ये प्रोग्राम रिपीट किया जाता है। सोमवार, बुधवार अते शुक्रवार दोपहर 12 बजे, मंगलवार, वीरवार अते शनिचरवार शाम नूं 7:30 बजे। पंजाबी जबान दे प्रेमियों, मन तां नहीं करदा कि असी तुहाडे कोलों छुट्टी लईए, पर की करिए, समां कदे किसे दा इंतजार नहीं जे करदा। अगले हफ्ते इस बार फिर नवा प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे। तद तक ले परमिंदर कौर,
1: बलविंदर कौर
0: अते साडी सारी टीम नूं इजाजत दिओ जी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले। वाजे तेरे नाथ अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे। केते तेरे राग परे क्यों कहिया है केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बह संतर गावै राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे।

पंडित पढ़नरुख ईश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगमच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भक्त रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जाची रचना जिन रचाई रंगी रंगी पांती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आख है सब कोई केवल वड्डा दीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए

रत्न सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतासें मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जान नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए तां का रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके कास्त हरिया रहाओ जनन पिता लोक सोत बनत कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान भौ करिया उडे ऊड आवे सह कुसा तिस पाछे बचरे छरिया तेन कवन खलावे कवन चुगावे मन मैं सिमरन करिया।

आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम्मा अगम अपारा सब ध्याव सुधजी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावा हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख प्रमाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बे अंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर ध्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी ते तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक

तू करता सचियार मैंदा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू किरपा कर तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जान आए सोई जन जान हर गुण सद ही आक वखाण जेन हर सेविया तेन सुख पाया

आधार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पालनो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचान, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर पूला। संतन दुख पाए से दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जान। जाप उद करक करा कर तारा, प्रजा तर तब देह अपारा, जाबे आ करक कर तो हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है, आप अपनी बूझ पुचार है, तुम सब ही ते रहत न।

दर्द पहो नित ना तिन नर की रह। पूजो जांकी एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत 17 सहस पण जय, अर्ध सहस पुन तीन कह जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रब बारा, तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया

सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज तेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावा हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कने कह नानक सच्चे साहब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया।

निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोए नाही, उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे, सुनकै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, भौ जल बिखम असगाह गुर।

अवतार बड़ी श्रेष्ठ है। राम नाम बिन फिर नहीं कोई हो निफल सब विस्तार रहो। परमेश्वर के नाम तो बिना कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं। इस वास्ते जिन्ना भी विस्तार खलारा पाया ये सारा निष्फल ही है। राहो चाली जया क्या तजिया बौरे जो दिशा सोचार। बौरे में नहीं चलिया इतों की लेना है की त्यागना है। जो कुछ भी हो रहा ये सारा कुछ दिस रहा। जो कुछ दिशा सोचार दिस रहा नजर आ रहा ये सारा चार खेरू क्या। जिस दिखिया को तुम अपने घर जानो साछाट जाओ सिर भार। जड़ी दिखिया माया को अपनी जान रहे उन्हें इतने छड़ के तू फिर हाँ जी सिर भार सिर उ पापा के भार लैके अगे चले जाऊंगे। माया ने इतने छड़ जाना तो सिर भारू सिर भर ने माँ के पेट में पुठे फिर तू टंगे जाऊंगे लटकना पाएगा। तिल तिल पल पल और फुन घट है बूझ न सकता गुबार। तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा समय पल पल की संज्ञा करके और भी उम्र घटती जा रही है लेकिन बूझ समझ ही नहीं कर सकता इस गल में। सो कुछ करे जे हाथ न चल है ये साकत का आचार। वो कम करता जिहड़े दे नाल नहीं जाने ये साकत मनमुख लोगों का आचार मैंने करतब है। संत जना के संग मिल बौरे तो पाव है मोख द्वार। ये भले लोग संत जना दे नाल मिलना कर इस मुक्ति का दरवाजा जरा ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त कर लवेगा। बिन सत्संग सुख के ना पाया जा पूछो वेद विचार। सत्संगित की संगत किए बिना किसी ने इतनी सुख नहीं पाया है। वेदा के विचार करने वाले जो पंडित लोग है विद्वान संत लोग उन्होंने तो पूछ लेना कर। राणा राव सगै को चल है झूठ छोड़ जाए पुसार। चाहे वो राजा है चाहे वो राणा है ये सब किसी ने झूठे पुसारे छड़ के एक दिन संसार तो चले जाना तुर जाना है। नानक संत सदा थिर निश्चल जिन राम नाम आधार। आजा निश्चल अचल निरंकार मिल के संत भी थिर स्वरूप हो गया। जिन्होंने संत महात्मा केवल एक शुद्ध परमेश्वर के नाम का आधार मैंने आसरा है। सारू महला चौथा कर तीजा दो पदा एक ओंकार सरूर प्रसाद। काहे पूछ जगरत हो संग बाप जिन के जने बडीरे तुम हो तिन सो जगरत पाप रहो। धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज जी ने जो गुरता गद्दी पे धन धन साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी ने सुभाईमान किया ते महाराज ने पंच तन दे रख के मत्था टेकिया। साध कर्मा कीतिया बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गद्दी का तिलक दिता ते फिर तीजा दे मन च होया कि मैं बड़ा सी कि मेरे तो तीजे जगह छोटी जगह इन्हों गद्दी देती। मैं बादशाह दे कोल जारी इन्हों सदा होर भी बहुत सारे जड़े वध घट अयोग शब्द कहे ये बचन सुन के गुरु रामदास जी ने सिक्ख्या देंदे हैं। काहे पूछ झगड़त हां संग बाप ये पुत्र पे थी जन मैं तेरा पिता जी स्थान ते तू किहड़े कारण साडे नाल झगड़दा है। जिन के जने वडीरे तुम हो तिन सो झगड़त पाप रहो। विश्राम दे कहंदे जिस बाप दे जने पैदा किते तुसी वड्डे होए उहदे नाल झगड़ना तुहाडे लई ये बड़ा भारी पाप है। जिस तन का तुम गर्व कर तो हो सो तन किसै नाप। ये पुत्रा जिहड़े धन दा तू इनकार कर रहे हो तन किसी का अपना नहीं। ये जीव तू अपने निरंकार नाल कादे वास्ते चल रहे इस तरह नहीं करना चाहिए सी। रब नूं यूं नहीं यूं करना चाहिए सी। जिस निरंकार ने पैदा किए बड़े हुए उस निरंकार ने झगड़ना पाप या दोष है। जिस धन का तुम इनकार कर रहे वो धन किसी का अपना नहीं है जी। जिस वेले चाहे निरंकार जो मर्जी खोलवे खिन मैं छोड़ जाए देखिया रस तो लग गया पछता। पातशाह कहते जेड़े खिंच ये देखिया माया ने छड़ के माया के रस में तुर जाना है जी उस वेले तेन बड़ा भारी पश्च।

पाप नहीं लगेगा। जो तुम्हारे प्रभु होते स्वामी हर तन के राखो जाग, वो मालक ने माता दे गर्व तेन रखा तेरे रखवाले बने, उसे निरंकार के नाम जपना कर, वो नाम जपदा रहे उपदेश कर। नानक जन तुम को जो सुनो तो जाय संताप, पातशाह कहते अं तेन उपदेश कर रहे हैं, जे तू साडा वचन मान लें कन कन देते सुने तेरे संताप सारे मिट जाएंगे। हर मला पंजवा कर पंजवा दो परे पड़ताल इस ओंकार सतगुरु प्रसाद। सारम राग चौथे पातशाह पंजवें कर दो पदों का शब्द पड़ताल आचरण कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का ओंकार प्रकाश रूपन सतगुरों की प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्ति होंगी है। जब मन जगन्नाथ जगदीश्वरो जग जीवन मनमोहन तो प्रीत लागी, पातशाही कृपा करते हैं। जो निरंकार कैसा है वो जगत का नाथ मालिक है, जगत का ईश्वर है, मन मोहने वाला है। हे मन जगन्नाथ जग, पूरे नाम नहीं जपना, क्योंकि कई मनुष्यों के नाम भी जगन्नाथ है, इसलिए क्या गया जगदीश जग। कहते जगत देवी।

प्यारे श्रोता जन, जनवरी 1 ईसाई गिनती दे सालां दी गिनती दा नवा साल है। अज दे प्रोग्राम विच इस दे पिछोकड़ बारे कुछ तथ आप जी नाल सांझे करन जा रहे हां। इस दिन दा पिछोकड़ पड़चोलन दे नाल नाल असीं उम्मीद रखते हां कि तुसी भी नवे साल दी याद नूं ताजा करदे होए अपने प्यारे गुरु दे दर्शनां लई तरला जरूर मारिया होवेगा, जे नहीं तो मारो हमला अते घट तो घट अपने नेड़े दे गुरु घर जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करो अते जोदड़ी करो उस गरीब नवाज अते जो घट घट दे जाननहार हैं, ता जो सतगुरु जी आप जी अते आप जी दे परिवार दे सिर उपर मेहर भरिया हथ रख के असीसां बख्शन।

क्यों ना फिर सूरज अते तारिका मंडलां दी कुछ जानकारी थोड़े नाल सांझी करिए। आप सब जानते ही होवोगे कि सूरज एक रोशन अते गर्म गोला है जिस दे आले दुआले धरती दे घूमण नाल दिन रात अते रुत्तां बनदियां हन। सूरज का ब्यास 8,64,000 मील है जो कि धरती के ब्यास नालों लगभग 109 गुणा ज्यादा है।

श्रोताजन कदी विचारिया है कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने लई कितनी देर लगती है। आप जी की जानकारी लई दस दईए कि जिस रोशनी का आनंद तुसी माणदे हो इस नूं सूरज तो धरती तक पहुंचने लई 8 मिनट अते 20 सैकंड लगते हैं। इसकी वेलोसिटी भाव गति 186,282 मील है या फिर 299,792 किलोमीटर कह लीजिए। इसकी घनफल मात्रा धरती दे तुल 1,30,00,000,000,000 गुणा बद है। देखो कितने नंबरां विच ना गवाच आयो। ये गिणतियां मिणतियां ही दिनां महीनियां अते सालां दा हिसाब किताब करन लई सहायक हन। श्रोताजन जिवें धरती

अपने धुरे उपर घूमती है। इसे तरह सूरज भी अपने धुरे उपर घूमता है। धरती एक दिन रात अथवा 24 घंटिया एक चक्कर पूरा करती है। इसे तरह सूरज एक महीने एक चक्कर पूरा करता है। अंतर केवल इतना है कि धरती एक ठोस वस्तु है, परंतु सूरज की बनकर गैसा का समुदाय है। गैसा का समुदाय होने करके इसके घूमन धरती के घुमाओ की निश्चित अंतर है। धरती सूरज के गिर्द चक्कर कटन वास्ते एक साल का समा खर्च करती है, परंतु सूरज तारिका मंडल का चक्कर पूरा करने तकरीबन 22 करोड़ 50 लाख या फिर 225 मिलियन साल खर्च करता है। प्रोटोजन सूरज का अंदरूनी तापमान लगभग 27 मिलियन फारेनहाइट अथवा 150 मिलियन सेंटीग्रेड डिग्री है। यही कारण है कि इस तापमान को रोकने लिए जो ओजोन भाव ऑक्सीजन की एक किस्म की कुदरती तह जो सूरज और धरती के विचाले है, उस बारे विज्ञानी नकल आख रहे हैं कि उस विच एक मोरी हो गई जापती है और उस मोरी राही सूरज दियां किरणां चो निकल रही अग लोकां लई कैंसर पैदा करती है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग वायुमंडल में छड़ियां जा रही गैसा रोकने लिए चिंतित हैं। प्रोटोजन होने तक सूरज की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल पूरी हो चुकी मनी जाती है। इसकी कुल उम्र 10 अरब साल अनुमान किया जाता है। सिक्खी विरसे नाल जुड़े स्रोत जिन्हां दी गिनती 21 सालां ते आधारित होवे जां फिर सूरज जां तारिका मंडल दे मेल जोल होण करके होवे। असली दिन तां उही सुहावना है जिस दिन अकाल पुरख अपनी मेहर दी नजर करे, भाव अपने नाम दी दात बख्शिश करे। इस तथाई गुरु अर्जन साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 136 उपर अंकत दरगाही विचना राही फरमाउंदे हन। महादेव मूरत पले जिसको नदर करें।

याद रखो कि प्रभु के चरण ही सारे सुखों का खजाना है। जेड़े जीव चरणी लगते हैं वह औखे संसार समुद्र विचों सही सलामत पार लंघ जाते हैं। उन्होंने प्रभु का प्यार प्रभु की भक्ति प्राप्त होंगी है। माया की तृष्णा अग विच वह नहीं सड़ते। उन्होंने व्यर्थ झूठे लाल खत्म हो जाते हैं। उन्होंने मन की भटकना दूर हो जाती है। वह मुकम्मल तौर पर सदा थिर हरी विच टिके रहते हैं। वह अपने मन में एको परम जोत परमात्मा ने बसा के सदा उसनु सिमरते हैं। जिन्हों उत्ते प्रभु मेहर की नजर करता है अपने नाम की दात देता है उन्हों वास्ते सारे महीने सारे दिहाड़े सारे ही मुहूर्त सुलखने हैं। किसी भी दिन पवित्रता के परम भुलेखे उन्होंने नहीं पेंदे। हे हरि मेरे उत्ते मेहर कर। मैं नानक तेरे दर तो तेरे दीदार की दात मंगता हाँ।

0: पाव से मेरे मन उस प्रभु दी सेवा भक्ति निरछल होके करनी चाहिदी है, ता ही उस पासों सारे सुख हासिल कर सकते हैं।
1: पलट पलट मुख
0: नाम जपन या सिमरन का सहज नाल ना केवल अनिखर सगो दुवला संबंध भी है। नाम जपन या सिमरन संबंधी इस दे सहज अवस्था नाल संबंधा बारे गल करन तो पहला एक गल स्पष्ट हो जानी जरूरी है कि नाम जपना या सिमरन किसी खास शब्द या शब्द समूह का दोहराना नहीं। ए तां परमात्मा दे उना गुणा नूं अपने जीवन ते जीवन जाच दा अंग बनाउण दा सुहिरद यतन है, जिन्हां दा वर्णन समुची गुरबाणी थां पर थां मिलदा है ते जिन्हां दा सटीक रूप गुरबाणी दे मूल मंत्र एक ओंकार गुरप्रसाद पढ़न सुन नूं मिलदा है।
2: सिमरन अते सहज दे दवल्ले संबंधी सरल व्याख्या करदिआं ए कहा जा सकदा है कि सिमरन सहज अवस्था दी हासिल करन च सहाई हुंदा है अते सहज अवस्था नाम सिमरन पाप परमात्मा दे विस्मादी गुणा दा मनुखी मनात्मा च संचार करन च सहाई हो सकदी है।

सहज अवस्था और मानसिक आत्मिक अवस्था है जिस विच मनुखी मन मनुखी कमजोरियां उपर सहज सुभाव की काबू पाउण सफल हुंदा है। ए ओ अवस्था है जिस विच मनुख विकारां दा गुलाम नहीं बनदा। इस अवस्था च काम क्रोध मोह लोभ अते हंकार आदि मनुखी मन उपर हावी नहीं हुंदे। इसे नूं गुरबाणी च गुरु हुकम च चलना जां परमात्मा दी नज़र जां कृपा दृष्टि दे तौर ते वर्णन कीता गया है। सहज अवस्था विच साडा मन गुरु प्रेम च भिजदा है, गुरु फरमान पाव गुरबाणी नाल जुड़दा है। ओ मन जिसका पटकना अते डोलना आम सुभा हुंदा है गुरु नूं आपा समर्पण कर दिंदा है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

इस दुनिया उत्ते कूड़ पठंड हनेर दिसे जद इस दुनिया उत्ते कूड़ पठंड हनेर दिसे अंबरी उत्ते छाया तुम गुमार अंधेर दिसे अंबरी उत्ते छाया तुम गुमार अंधेर दिसे सूरज दा बल रूप आकाश न कहां ले आंदे नो संत रूप भगवान जग

नाम सुन संत बादशाही कल जी का नाम सुन संत बादशाही कल जी का नाम सुन संत बादशाही अज ओ शेर फड़

ओकरा किसी पे लगी मजाक मादर ओकरा किसी पे लगी मजाक मादर ओकरा किसी पे लगी भूले आना सिख पड़े मौत मुँह आए

0: चिट्ठी ला दरबारों आई, रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, करो कपल जला देवे करो कपल जला देवे एवे झूठ बोलती माई, करो कपल जला देवे एवे झूठ बोलती माई, रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबारों आई, करो कपल जला देवे एवे झूठ बोलती माई, करो कपल जला देवे एवे झूठ बोलती माई।
1: मन च पूर्ण विश्वास होवे, जिन्हां दे मन विच पूर्ण विश्वास होवे असी ओ रुखसार हुंदे आ। मेरी मां झूठ बोलदी आ, असी सरदार हुंदे आ। मेरी मां झूठ बोलदी आ, असी सरदार हुंदे।

मां भी कोई पेश ना गई, उसने पछाने को इनकार कर दिता। भर जवानी और जीवन साथन सगना का चूड़ा शगना की मेहंदी लाई, अपने पति अगे हाथ जोड़ के खड़ गई। इन्हें बहुत प्यार भरी बेनती की, हे मेरे प्रीतम जीओ, मेरे पे ही तरस करो, मैं तुहातों बिना अपनी जिंदगी किवें कटांगी। मेरे शगना की मेहंदी ना खाक मिलामी, मेरे शगना की मेहंदी ना खाक मिलामी, मेरे कोमल दिल विच हाय तीर ना मारी, मेरे कोमल दिल विच हाय तीर ना मारी। सौ जुड़ी च लगिया तू तोड़ नभामी, सौ जुड़ी च लगिया तू तोड़ नभामी। जदों जवान पत्नी ने भीम चंद के सामने भीम सिंह बन चुका सूरमा अपनी जवानी का तरला पाया, उदो भीम सिंह ने आख्या, अच्छा अजे परसों तेरा मेरा विआह होया, तैनू मेरे इन्ना प्यार हो गया, तू मेरे बिना बच नहीं सकती। पर जिस बाजा वाले का अमृत थकिया सिर दे के मैं भी ओदे बिना नहीं रह सकिया। पिया तू मैं तेरा सदनी तैनू प्यारा, इवें मेरा प्रीतम मैनू प्राण आधारा। कच बदले हीरा कोई तजदा तकिया, कच बदले हीरा कोई तजदा तकिया, ए फानी रिश्ता ओ नित दा सहारा, ए फानी रिश्ता ओ नित दा सहारा। जिथे मां नू पछाणन तों इनकार कर दिता सूरमे ने, उथे अपनी जीवन साथन नू भी पिछे मोड़ के हसदे हसदे शहादत दा बाटा ए ओ छक गया।

0: तेरी कमर सिखी नू मेरे सतगुरु दिया तेरी अमर सिखी नू मेरे सतगुरु जी अपने सिर दे नाल निभा देंगे धन दौलत जवानी दे दात अपनी लेखे दस दे सब कुछ ला देंगे लेखे दस दे सब कुछ लगा देंगे असी हिंदू रही सिख नहीं पुत मेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा मैं गल समझाई रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबार आई रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबार आई मैनू करो मुक्त छेती मर के मैं मुक्त हो जावा मैनू करो मुक्त छेती मर के मैं मुक्त हो जावा सिंह गल जी तरदा हाँ मर के भी मैं अमर कहावा सिंह गल जी तरदा हाँ मर के मैं भी अमर कहावा मुक्ति पाई तेरे कदम चला दो वे मैं झूठ बोल दी माई तेरे कदम चला दो वे मैं झूठ बोल दी माई रुक जाओ जला दो वे चिट्ठी ला दरबार आई तेरे कदम चला दो वे मैं झूठ बोल दी माई रुक जाओ जला दो वे चिट्ठी ला दरबार आई तेरे कदम चला दो वे मैं झूठ बोल दी माई
1: शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद सिखी की शमा है परवानिया ने इससे कई बार अपना आपा भला किया करते रहेंगे इन्हना ही विचारों ना समाप्ति उन्होंने महान शहीदों श्रद्धांजलि के फुल भेट कर रहे सर महापुरखों के चरणों में हाजिरी दवा रहे सर बहुत बहुत धन्यवाद समुची साध संगत का ढाडी असा एयरपोर्ट फोर्ड विखे लगातार सेवा निभा रहा है गाहे वगाहे समा कढ के प्रबंधकों के हुक्म उत्ते फुल चढ़ाया होया इतने भी वीकेंड से संगतों के जोड़े झा रहे हैं उम्मीद है टुटी फुटी सेवा प्रवान करोगे सारी संगत का धन्यवाद बाबा जी तो अगला प्रोग्राम शरण करो ढाडी इतने रिकॉर्ड हुई कैसटा और सी डी साढ़े को मौजूद हैं किसी भी लोड़ हो स्टेज के बाद साढ़े संपर्क करके तुम प्राप्त कर सकते हो बुलाओ प्यार सा फते गद के आखो जी वाहगुरु जी का खालसा
2: वाहगुरु जी की फतेह महाराज जी के दरबार अंदर जुड़ बैठे परम सत्कार जो गुरु रूप सत संग जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह सारिया ही सिख संगत
3: केलबो की रंगीली धरती के वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375
4: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singhsabha2@gmail.com एक बार फिर नोट करो जी singhsabha2@gmail.com
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

उस वेले अपने साथियां नु कहया, जदों मन विच ए सोच लिया बेशक स्थिर कटवाना पवे, शरीर खत्म हो जाए, पर गुरु की सेवा नहीं छड़नी। साथियां नु कहया, मैं फैसला कर ले, हम तो गुर हित दे हैं प्राण, कि मैं गुरु वास्ते आज अपने प्राण अपनी जान दे देनी। संग्राम कहते ने लड़ाई दा मैदान, अज एहो जी लड़ाई करनी, एहो जिहा संग्राम मचाना है कि दुनिया नू

कि अज कोर संग्राम मचाने लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना। ये गल क्यों कही आओ इस बारे विचार करिए। आनंदपुर साहब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निवास करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ सजाया। खालसा पंथ सजाने का मकसद ऊंच नीच भिन्न भेद मिटाने, जातां पातां खत्म करनियां, मजलूमां दी रक्षा करनी, जिन्हां नूं दुनिया ने नीच ते नीवें कहा उन्हां नूं सरदारियां दे के अपने गल दे नाल लगाया। जुलम दे खिलाफ गुरु साहिबां ने अमृत दी दात दे के सिखी स्वरूप दे के लोकां नूं जालमां दे सामने खड़ा कर दिया।

दोस्तान दा बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब बड़ा जालिम सी। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब ने ठीक ना समझिया, सही ना समझिया। गुरु साहिबां दा मकसद दुनिया विच जुलम नफरत ईर्षा दूर करनी, सारिआं नूं इक समान इज्जत मान देना, इक बराबर बिठाना। पर औरंगजेब चाहुंदा सी कि हिंदुस्तान विच सारे धर्म खत्म हो जाण। पर औरंगजेब ने हिंदू धर्म नूं खत्म करना चाहिआ, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता का सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। बहुत लोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने निताने हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन कि मुगल बादशाह के अगे सिर नहीं सन चुक सकते। अगा औरंगजेब के नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़ते हैं। सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइया ते पहला भी हुई, हर लड़ाई विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जित हुई। आखिर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो फौज भेजी, कुछ पहाड़ी राजियां दी फौज आनंदपुर साहब के किले में घेरा पा लिया गया। 6-7 महीने घेरा प्यारे किले के अंदर खाण नूं कुछ ना रहा, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ओ ना डोले ते ना ही उन्हां दा मन डोलिया। चढ़दियां कलां दे दाते चढ़दियां कलां विच रहे। फौज जिहड़ी बाहर बैठी है किले नूं घेरा पा के वो भी थक चुकी, वो जाना चाहते ने, पर बादशाह का हुक्म मजबूर ने। आखिर औरंगजेब ने कुरान शरीफ से एक कसम लिख के भेजी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो, किधरे होर चले जाओ, मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी कि तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजियां ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नू महाराज आप किला खाली कर दियो, कई महीने हो गए ने किले विच असी बैठे हाँ, खादा भी कुछ नहीं, खाण नू रिहा भी कुछ नहीं। औरंगजेब मुसलमान है, उसने कुरान शरीफ की कसम खाधी। पहाड़ी राजिया ने आटे की गऊ बना के कसम खाधी है कि साढ़े ते हमला नहीं करनी। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने, साढ़े ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते। भाई मान सिंह इसने बेनती की थी महाराज, पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਓ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। 40 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ।

पायमान सिंह अपने साथियों समेत आनंदपुर साहब दे किले तो निकले, गुरु नूं ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नूं तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नूं पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब के किले का की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार का, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के आए हां ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवो, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, तां असी शुकर करना सी साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नूं छड के आए हो, मौत को बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो इस साडियां चुनियां लै लो, पग्गां ला दिओ, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दिओ, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा लवांगियां, असी गुरु की सेवा करांगे। जदों यह गल घरां वालियां ने कई फिटकारां पईयां, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल कीती, दुनिया दे सुख बदले, गुरु नूं छड दित्ता, सिखी छड दित्ती, पर जिहदी कोई इज्जत नहीं उहदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है, धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना, असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है, आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहबां ने छड दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड्डण वास्ते, किला छड्डिया, जिन्हां कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्हां कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्हां आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्हां भी कसमां तोड़ दित्तियां, गुरु साहबां दे काफिले से हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां होईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां, कई प्यारे रुड़ गए, परिवार विछड़ गया, माता गुजरी, गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता ते छोटे साहबजादे इक पासे, माता सुंदरी जी इक पासे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादियां दे नाल इक पासे,
आरा परिवार बेरू खेरू हो गया, कोई किसके पास से कोई किसके पास से चला गया। हौली हौली पाईवान सिंह ते इन्हां दे साथी गुरु साहब का पता लगा रहे हैं। ये खबर घर घर फैल गई कि वड्डे साहबजादे चमकौर दी गढ़ी शहीद हो गए, छोटे साहबजादे सरहंद दियां नीहां विच चिणे गए ने, ते गुरु साहबां दा हाली कोई पता नहीं कि गुरु साहब किस पास से।

कपूरे के फूलों किला मंगेया। कपूरे ने किया महाराज, मैनू मुगलां तो डर लगता, बादशाह को डर लगता, अगर मैं आपको किला दिता तो मुगलां ने बादशाह ने मैनू खत्म कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया कपूरिया, भय वाले मना दी।

जो इन्ना बदावा लेके दिता। गुरु साहबां दे चेहरे ते एक रंग आया, एक दया अखां विच लाली, चेहरे ते जलाल। साहबां गया, मेरी किसी नाल लड़ाई नहीं, मैं लड़दा जुलम दे नाल। मजलूमां दी रक्षा करन वास्ते मैं कुरबान पड़ी। मेरे बापू ने, अकाल पुरख ने जंग मंडे जुलम दे खिलाफ। जिन्हें सेवा करनी वो मैदान विच नितरे, जिन्हां नूं जाना प्यारियां ने वो अपने घरां नूं जा। इन्नी गल कह के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज घोड़े ते सवार होए। सिंघां दे नाल खिदराणे दी ताव तों अगे चल पए। भाई मां सिंह इन्हां दे साथी इस सारे जने उस जगह बैठ के सलावां करन लग पए कि हुण की कीता जाए। गुरु साहब दे चले गए, बदावा भी नहीं पाटिया। कुछ देर विचारां हुंदियां रहियां। अचानक शरीर का पतला, हड्डियां का मजबूत, कमर कस्सा कीता है, यह है भाई मान सिंह। म्यान विचू कृपान खिची, जकारा छड़िया, लकीर मारी, लकीर टप्पी, देवंगार के किया। भाई मैनू अज गुरु दे हुक्म दा पता लग गया। मैं अज ये फैसला कर लिया है, हम तो गुर हित देह प्राण, विच संग्राम करें अरहान, कि हुण वेला आ गया गुरु दे बदले अपनियां जाना वारन दा। ते मैं अज

भाई मान सिंह ने किया, हम तो गुर हित दे हैं प्राण, विच संग्राम करें अरहान, तुर्क हजारों गुरु के गिर्द, कोई समय तजी हुए मर्द, हजारा तुर्क गुरु नु फड़न वास्ते, गुरु नु खत्म करने वास्ते तुरे हुए, वैरी ये दुनिया पर अज वेला है गुरु की सेवा करन दा, एती पीर गुरु पर करी है सद है तजेस करी, जीवन पाए करेंगे कहां जो प्रभु काज ना अहे इह, इस जीवन नु की करना है जे गुरु की खुशी ना मिली, सिखी गुआ के जीवे ता क्या जीवे, सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल।

ऐसी तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उन्हूं बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, कृपाना कढ़िया, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़दे बेलियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली की तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा कृपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने जदों देखिया महसूस किया ते गुरु साहिबां नूं खुद ये गल लिखनी पई। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी, जियो ओज ऐसो हजारन जैसो, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े उत्साहे रणंग छत्र गाहे। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी ते मेरे पुचंगी, मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई के मैदान विच निकरे। कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए। हाथियां नूं भी कीड़ियां दे समान समझदे ने, बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने। रण छत्र गाहे, रण कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान, लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नूं अपने पैरां थले लताड़िया। चले वीर सोउ बड़े उत्साह परे शस्त्र मारे, महा जंग माही कड़े म्यान तेज, गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सोछाले उछाले। म्यान विच तेज कढ़ी हथां विच ढाल फड़ी, बड़ी चलाकी दे नाल छाला मारदे वार बचांदे वार करदे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए। साहिब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया। कड़े म्यान तेज गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले, आखी चटापट जुटे लटा लट होए, फटापट सुटे कटा कट जोए, कटा कुट कटे चटापट मारे, खटा खट खोटे हटा हट हारे। अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है, ना कोई गोली चल रही है, इसने फतेह का डंका बजाया, वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुफे है, सैंक दा पे है, सा टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करता है, ऐ कलगी पर पिता अज देख ले तेरी गली पैर पाया, पैर पिछे भी फुटिया, जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं। हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिहदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, बिदावा पाड़ दे तां कि मेरा मरना।

गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जो मरदा है वो कदी पूरा नहीं होंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते ओदे प्यारे पूरे ने।

एक ओदा मरना जड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है। इथे भी फिटकारा दरगाह विच भी फिटकारा। एक मरना भाई मान सिंह दा उन्हां दे साथियां दा जिन्हां दा सत्कार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीता। उस जगह ते नाले वार दिता। इस जगह का नाम हुण मुकत सर हो जाएगा। जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार सर दा नाम वह मुक्ति नूं प्राप्त होवेगा। वह जो मंगेगा उसनूं प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुकत सर जांदा है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है, वह इन्हां शहीदां नूं भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले जाना वारियां जाना दे नाल प्यार नहीं किया। गुरु नूं सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती ते सानू राह दस्या है भाई। जिहड़ा सुखी गवा के पत धो के जीउंदा है उहदा जीउणा कोई जीउणा नहीं। कोई भी है किसे भी धर्म का किसे भी मजहब का जे अपने धर्म च पक्का नहीं अगर ओदे अमल चंगे नहीं तो ओदा जीउणा कोई जीउणा नहीं। भाई मान सिंह ने जो किया करके दिखाया कि असां तां गुरु वास्ते प्राण देने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे तां कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीवीए। जो तेरा मिशन है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

ऐसे महाबली महायोधे सर्वांश दानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हें दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया उन्हें अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बहत रवे गुरु के उपदेश से चले

माँ तो हर हर हर मुख कही है, हर हर हर मुख कही है। माँ तो हर हर हर मुख कही है, हर हर हर।

कार्तिक मास रत सर्ग पूर्णमासी, कार्तिक मास रत सर्ग पूर्णमासी। आज दान खास करी, आज तेरी बारी है। अत्र अधिक नौ नाच की माता हो, रूप गुण शोभन सदा अधिकारी है। चात्र चत्र पाठ सेवक सहेली साथ, संपदा समग्री सुख सहज सुचारी है। सुंदर मंदर शुभ लग्न संयोग भोग, जीवन जन्म धन प्रीतम प्यारी है। नसल में दिल विखो करता घर आया, मेरी सेकड़ी है आडंबर मरिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। सफल जन्म धन आज को दिल सराय, सफल जन्म धन आज को दिल सराय। पहर मूर्त करी और पर पाए है, सफल सुनार चार सहजा संयोग भोग। आंगन मंदिर अत सुंदर सुहाय है, जगमग जोत शोभा तीर्थ प्रताप साध। आन सहज सुख सागर बनाए है, अर्थ धर्म काम मोक्ष काम नाम, प्रेम रस रचित हवाए।

फारसी का शब्द है और श्रवण करके हता कबीर करीब तू सारे जपो एक बार सारे पंक्ति कहो भावे के राग औखा है भावे शब्द औखा है पर गुरु कृपा कर दें तो फिर सारा कुछ सुखायल हो जाता है सौखा हो जाता है गुरु कृपा आओ बेनतियां करो कि सतगुरु जी सानू कीर्तन सुखा दो साधे तो करो जहाजा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जी लाए जाना असि भी कीर्तन करिए जिदा भाई मरदाना जी ने गुरु की मेहर लैके कीर्तन आरंभ किया रबाब हो जाई तो असी भी सारे कीर्तनियां बन जाइए तो कीर्तन करके गुरु अर्जुन देव महाराज ने कृपा की सब संसार ने कीर्तन की दात दे दी और जपो जी।

कर रहियां ने प्यार वालियां संगतां। प्यारियो मैं पहले भी बेनती कर चुका, प्यार ही सब कुछ है, सब कुछ। बाबा जी प्यार विच आके बोलिया करदे सन, बचन करदे सन, कहिंदे गुरु नानक की दा, ते फिर आपे ही कदी कदी मौज विच आके प्रेम विच आके कहना, जेड़ा गुरु नानक दा प्यार विच बन गया गुरु नानक ओदा। एक बारी आखो सतनाम, पास प्रेम लिखा। तुसी भी बनाओ भावना कि असी इस वेले सत्संग विच धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सामने बैठे हैं, ते दीदार कर रहे ते उस वेले मेरे किहो जे लग रहे ने मालक। बड़ी सोहनी मेरे सतगुरां ने सिर ते दस्तार सजाई, बड़ी प्यारी मेरे मालक ने कलगी लाई, बड़ा प्यारा मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी ने चोला पाया, सिंघासन ते विराजमान मेरा साहब। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चा पातशाह। सारियां संगतां पोपणियां बिरतियां नूं लै जाओ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणां दे विच, ते ओ मौज ओ माहौल दे विच सारियां संगतां अपने आप नूं महसूस करके कि असीं इस वेले गुरु हरगोबिंद बापू जी दे बिल्कुल सन्मुख बैठे हैं। एक बारी कह दिओ वाहिगुरु। बड़ा प्यारा नज़ारा बनिया। ओ बुरानपुर तो आईया संगतां मीरी पीरी दे मालक दे कर रहियां ने दीदार, दास गरीब दा चित आया दे चित। सारियां संगतां अंदरों प्यार विच पड़े होए गल कि गुरु हरगोबिंद पातशाह उस वेले किहो जे लग रहे होणगे, किहो जे लग रहे होणगे, किहो जे। सारियां संगतां महसूस करके दास दा चित इक वारी सारे इक वारी पढ़ लो जी प्यार नाल।

एक बार। जो तद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड हत्या कमाहे। असंख बापी बाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ताव, गम गम असंख लो। असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गाव, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग बखाण, जिने लिखे तिस सिर नाहीं। जे फरमाए तिव तिव पाए, जेता कीता तेता नाउ। बिणनावै नाहीं को थाउ, कुदरत कवण कहां विचार। वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै ऐसा ही भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हथ पैर तन दे, पानी तोता उतर सुखे। मऊत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लैया तोए। भरिया मत बाबा कै संग, हो तो पैना वै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिखला जा। आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आव जा। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे दिल का मान। सुनया मनया मन कीता भाव, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मनाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वास्थ्य आस बाणी बरमाओ, सत सुहावन सदा मन चाओ। कवण सवेला वक्त कवण, कवण फित कवण वार। कवण सिर उती महा कवण, जिथो आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादियां, जे लिखण लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने, रुतमा न कोई। जा करता सिर ठीक साजे, आपी जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखे, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाही, कीता जा का होवै। नानक जे कहो आपा जाना, अगे गया ना सोहै। पाताला पाताल लख आगास आगास, ओड़ कोड़ कपाल थके। वेद कहन कवात, सहस अठारह कहनक ते बासलू एक धात। लेखा होए ता लिखी है, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाह एती सुरत न पाईयां, नदियां आतै वाह पवहीं। समुंद न जानी है, समुंद शाह सुल्तान। ग्रह सिधि मल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरै। अंत न सिवती करण न अंत, अंत न करण देण न अंत। अंत न वेखण सुणन न अंत, अंत न जापै कै मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण किते बिल लाही, ताके अंत न पाए जाहे। एहि अंत न जाणै कोई, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाउ, ऊचे ऊपर ऊचा नाउ। ए बड़ ऊचा होवै कोए, दस ऊचे को जाणै सोए। जे बड़े आप जाणै आप आप, नानक नदरी करमिंगात। बहुता कर्म लिख्या न जाए, वड्डा दाता दिल न तमाए। केते मंगह जोध पार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खपत टैम बेकार, केते लै लै मुकर पाए। केते मूर्ख गाही गाए, केतिया दुख भोग सदमार। ए बेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए। हो राख न सकै कोई, जे को खाए को आखण पाए। ओ जाने जे तिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे। आखे से पे कई के, जिसनों बख्शे शिवत सलाह। नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण मुल वपार। मुल वपारी अमुल भंडार, अमुल आवे मुल लै जाए। अमुल पाए मुला समाए, अमुल धर्म मुल दीवान। अमुल तुल मुल परवान, अमुल बख्शीस मुल निशान। अमुल कर्म मुल फरमान, अमुलो मुल आख्या न जाए। आख आख रहे लिवलाई,
आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करें वख्याण आखे ब्रह्मे आखे अंद आखे गोपी तय गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते गीते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते गीते होर करहे ना आख न सक कई के जेवड़ पावे देवड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आख बोल बिगाड़ू ता लिखिए सिर गवार गवार सो दार कहा सो कर कहा जित मैं सर्व समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परिसो कही अन केते गावण हारे गावे तो न पौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे हैं चेत गुप्त लिख जाण है लेख लेख धर्म विचारी

पाद विचारे गावन जति सति संतोखे गावें वीर करारे गावन पंडित पंड रखी सर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहन या मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन पाय तेरे आसड़ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गावें खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा उगर कर रखे तारे सही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन हो पाई हर कर वेखै किता अपनाउ जब दस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह बात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरम बद झोली ध्यान की करें बिभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको एश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जानकी रद सदरा साद संजोग बजोग कार चलावै लिखे आवै पाग आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको एश एका माई जुगत व्याई तिन चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तिस पावै तिवै चलावै जब होवै फुरमान ओह वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता ए बिडाण आदेश दिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको एश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जानकी रद सदरा साध संजोग बजोग कर चलावै लिखे आवै पाग आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको एश एक दूजी पौ लख हो है लख हो वै लख बीस लख लख गेड़ा किया एक नाम जगदीश एतरा पद पवड़िया चढ़िया होया कीस सुन गला आकाश की गीता आई रीस नानक नदरी पाई है गूड़ी गूड़ा ठीस आखण जोर च पैन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीज न कोए राती रुति स्थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती साप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग दिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंज परवान नदरी करम भवानी सान पच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्मखंड का एहो धर्म ज्ञानखंड का एहो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घाट तकड़ियां रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मिर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सत बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देवदान मुन केते रतन संबंध केती अखाणी केती अबाणी केते पाव तंदर इंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मैंगन प्रचंड जिथे नाद विनोद गोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिथे घड़ी है सुरस दंकी शुद्ध

ओंकार आदि कथनियन आदि कलखंड ख्यालु गुर भर अकालु कर कर प्रणामु चरण नाम अंश जगात अजन बात अनचंज गात अंधरंज बात अंठुट भंडार अंठट अपार अडीठ धर्म अदीठ कर्म अण ब्रण अंतु दाता महंत हर बोल मना शांत तव प्रसाद करुणालया है हर कालया है खल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है गल कारण है सर्ववारण है जरद के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्य है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्ववास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड है खल खंड है परते पर है करुणा कर है जपा जप है थप थप है अग्रता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है अग्रता कृत तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजपा कृत है अमृत अमृत है नरनायक है खल गायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है बहुभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है गर्दाकर है हरदा हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयादिजंग नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग दामसंग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो वांग वंगे भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे दुर्भंगी दुर्गाले नंगीय कामे एक श्री शांग अजाय अलाय पया पया पुवजू अनाश काश गंज पांज लख पख अकाल दयाल लेख भेखो नाम काम घाटा नाथे परमाथे जो नियम मुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रया दिशंग नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणाशे गंजलो नामे समाज तुल निवासे इंद्र कामंग बबूते समाज तुल स्वरूपे गो करमंग प्रणाशे सो धर्मंग बबूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मलक निंदा समाज तुल निवासी अजैब बबूते गजैब गनी मैं हरियंकरियं करीम रेम चतर चक्र भारती चतर चक्र बहुते सुयंपव सुभंग सर्वदा सर्वजूते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संग अभंग बबूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुयंपव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संग अभंग बबूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीयो तव प्रसाद सवैये को ओंकार सतगुरु प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सदान के देव पुरो कर जो जदि गए सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारे कर संत समूह ने गति गए सारे देश को देख रहे हो मत को न देख प्राणपति गए श्री भगवान की भाई कृपाऊ तो एक रति बने करति गए मातम दंग जर जर संग अनूप दंग सुरंग सुधारे कोट दुरंग रंग गुरत है पौन के कौन गुजात निवारी पारी पुजान के बली वृद न्यावत शीस न जात विचारी ते पय तो काम पय भूपत अंत को नंग पायम पधारी जीत बरह सब देश दुशान को बाजत टोल मृदंग नंगारी गुंजत गुड़ की जान के सुनबत हैं सुत हैं हजराज हजारे भूत पवैख भगवान के भूपत कौन कने नहीं जात विचारी सरी बात सरी भगवान बजे बैन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दय दमदान सुरंजम नियम एक सेख वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुवान के पेख है पौन आहार जति जतार सब सब चार हजार के देखा है श्री भगवान भजवन भूपत एक रतिवन एक लेखा है शुद्ध सुपादर अंत द्वाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गवान परमान परमन कर पर्वत पंकर हलेंगे तोर रीन ब्रो नवास माध्यम दंगन मान मलेंगे सरी बस सरी भगवान भजेवन त्याग जहान दान चलेंगे
सरीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां नदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार के सार भैया तोर तो देश मिलन वासन माधव जान के मान मलैया गड़ी गड़ान को तोड़न हार उस बात नहीं जग चार लवैया साहिब सरी सब को सरनायक जाज का नहीं सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जित जल में सर में पल भी पर सब सब साफ सपेंगे पुन प्रतापन बाट जन बापन के बहु पुंज खपेंगे साज समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब लोग जपेंगे ओट स्नान गान एक स्वंबर साहब भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सरी पात गंध भरे भाष भरेंगे जे नार श्री पत के बरसें पाग देव नर फिर न दे धरेंगे कहाँ पायो जो दो लोचन मुंद कह बैठ भक्त ध्यान लगाये उन हाथ फिरियो लिये सात समुद्र ने लो गए उपर लोग आयो बास की उपख्यान से बैठ गए ऐसे ऐसे सब बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब है जन प्रेम की हो जनि प्रभायो काहू ले पान पूज धरे सिर काहू ले रिंग करे अटकायो काहू रखियो और बची दिशा में काहू पिछा कुछ सुनवायो को बदान को पूजता है बास को मृदान को पूजन दायो पूर करे और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पातशाही दसवीं कव्यो वाच बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काब आप हाथ मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे कर सब बैरन का वाज संगर पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं जो वर जाऊं सो तुम दे पाऊं सेवक सिख हमारे दवदारी है चन चन सदर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे मरण काल का त्रास में भरे हूजो सुधा हमारे पछा सरिया तजू कर रक्षा राख ले रखनारे साहेब संत साहेब प्यारे दीन बंद दर्शन के हंता तमहपुरी चतर कंता काल पै ब्रह्म बुद्धरा काल पै शिव जो तरा काल पाए कर विष्ण पर काशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सिव कियो वेद राज ब्रह्मा

एक एक की पीर पछाण नाय, गड़ गड़ के बड़ बड़ की जान नाय। जा बुध करख करा कर तार, प्रजा धरत तब दे अपार। जा ब्या करख करत हो कबहूं, तम मैं मिलत दे दर सबहूं। जेते बदन श्रेठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद वेद अरियालम। निरंकार निर्मकार निर्लंब, आद नील नाद संभ। था का मूढ़ चारद भेदा, जाको बेबना पावत वेदा। ता को कार पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महानेव को सदा सेव, निरंकार का चिणत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पैन पैन तो देती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूपानुप रूपा, रंग भैराव के भूपा। अंड जेरज सिद जगिनी, अदपुर खान बहुर रज दीनी। कहूँ सिमट पयो शंकर कछा, सगरी सिरत का जंप। आज गास रूप से जंप, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख बहार सिख संग रो, दुष्ट देर हो उठ बदल पाता। सकल मलेश करो अनकाता, जे अस्त हो जे तब सरणी परे। दिन के दोष्ट दुख आवे मरी, पुरख जब न पग परे तिहारे। तन के तम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं। ता के काल निकट नहीं आए, रक्षा होए तायु सब काला। दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो। ता के दाव तन कम हरे हो, रिद सिद कर्म सब होई। दुष्ट शास सक न कोई, एक बार जंत मैं सुबारा। अकाल बाज दे दाय उबारा, जिन नर नाम दयाल कहा। दार्द दुष्ट दुख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दैले उबारी, सर्ब ठौर मोह सहाई। दुष्ट दुख तेरे बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दैले उबारी, सर्ब ठार मोह सहाई। दुष्ट दुख ते लै बचाई, राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन बजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गा बणाइयां। शब्द उतांगा वो हरी केरा, मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ।

क्या पढ़िया क्या गुनिया है, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले ओ सोई। क्या पढ़िया है क्या गुनिया है, क्या वेद पुराना सुनिया,

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

पर मैं हो रहे अत्याचार नूं देख के भी कुछ नहीं सी कर सकदा। पहला सुट्टे गए ग्रनेड बारे बहुत सारे अंदाजे लाए जा रहे सन। सानू कुछ भी पता नहीं सी लग रहा क्योंकि सानू पहरा दे रहे फौजियां वालों सख्त हदायत सी कि आसे पासे नहीं देखना। इस तों बाद मैनू ते होर सज्जना नूं जिथे जिथे भी वह मौजूद सन उथे उथे ही बंद कर दिता गया। अते कुछ कु सज्जना नूं गुरु रामदास निवास के कमरिया ते बरांडिया विच बिठा के सख्त पहरा लगा दिता गया।

जनरल ब्राड अपनी किताब दे पन्ना 114 उपर लिखता है कि उन्हां नूं भी शक सी कि वो बाहर निकल गए हैं, पर जब 26 मद्रास रेजिमेंट अकाल तख्त अंदर बढ़े तो उन्हां दो बाहर निकल रहे जुझारुआं चों इक नूं फड़ लिया अते ओ ही उन्हां नूं संत जरनैल सिंह अते उन्हां दे तकरीबन 40 साथियों ने मृतक देहां कोल लै गया सी।